रुझेवे बारे चीन की कहावत है कि रुझे रहने वाले दरवाजे के जोड़ा विच कीड़े घर नहीं बना सकते। विद्या विचारी तां पर उपकारी

0: के दोख में फसो।
1: जट्टा के मुंडे साढ़े नाल है जे चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
0: थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए।
1: रुक दे फट्टा
2: जुगनू। हाँ। पुठे पंगे बहुत कर ले।
1: हाँ।
2: मैं ते तवा बहुत ला लिया।
1: बहुत तवा ला लिया।
2: हूं आप कुछ चंगा कम करिए।
1: की करिए?
2: चंगा कम कर।
0: शादी शुदा छड़े ते कुआरे हो, झगड़े छड़ के दो मिनट हसो।
1: जट्टा के मुंडे साढ़े नाल है जे चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
0: थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए।
1: रुक दे फट्टा
2: जुगनू। पुठे पंगे बहुत कर ले।
1: हाँ।
2: ते तवा बहुत ला लिया।
1: बहुत तवा ला लिया।
2: हूं आप कुछ चंगा कम करिए।
1: की करिए?
2: चंगा कम कहन तो भावा भी आप लीडर बन जाइए।
1: हाँ।

0: जिंदगी जेड़े दो चार चंगे काम किए ना उन्होंने भी पोचा फिर जूगा।
1: ओ नहीं नहीं यार राती मैंने सपना आया कि ना आप दोवें वोटा विच खड़े हुए हैं।
0: अपन वोट कौन पाऊगा पता घर नाल भी लड़े हुए
1: यार लीडर है कि भाषण देना हों पैसा तो कोई देना नहीं हों
0: यार सब तो वड्डी चीज होंगी भाषण आप देना नहीं आता लीडर किए बन जाएंगे यार
1: भाषण आप दोवें दया करा
0: यार एक भाषण दो जाने किए दया करा मैं समझा नहीं
1: दोवें इदा कि अद्धी गल मैं शुरू करा करूँ अद्धी गल तू पूरी कर दिया करी
0: अद्धी गल भाषण की तू शुरू करेगा मैं पूरी करूँ रहन दे मेरे मुंह चो कोई पुठी सीधी गल निकल जू लोग डांगा मान गए मैं ये काम बिल्कुल नहीं करना यार
1: कुछ नहीं हुंदा अपन रिहर्सल करके देख दे
0: चलो ठीक है रिहर्सल कर लेना मैं तेरे नाल अद्धी गल तू शुरू करेगा तो मैं पूरी करूंगा जे मेरे मुंह चो कोई पुठी सीधी गल निकल गई तो तेरी जिम्मेवारी है मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं
1: ठीक है
0: चल ठीक है शुरू कर
1: करा शुरू
0: हां कर शुरू
1: मेरे भ्रावो
0: इत्थों जावो
1: तू मेरे भाइयो
0: मेरी भरजाइयो
1: तू मेरे वीरो
0: आलू चीरो
1: मेरी भैनो
0: ते एदी भैनो
1: सानू पता लगा के साडी विरोधी पार्टी ने रैली विच कठ वधाउण वास्ते 100-100 चमचे इकट्ठे होया पर सानू इन्हां चमचियां दी लोड़ नहीं
0: क्योंकि साडी रैली च पहली बड़े नंग ते मलंग इकट्ठे होए
1: साडे देश नूं तरक्की दी लोड़ है
0: बिलकुल लोड़ है
1: असीं कईआं पिंडां विच गए आ जाके देखिया कि पिंडां विच स्कूल ही नहीं है
0: जिथे हैगे उथे पढ़ाई दा कोई रूल ही नहीं है
1: कईआं पिंडां विच स्कूल हैगे आ
0: अच्छा
1: पर उथे बच्चां दे बैठण वास्ते फर्नीचर नहीं हुंदा
0: बच्चां ने बह के समाधि लाउणी है जदों पढ़ाउण वास्ते कोई टीचर नहीं हुंदा
1: पिछे जे अखबार खबर आई सी
0: केड़ी
1: तुसी पढ़ी होनी आ
0: केड़ी खबर
1: के बिजली महकमे दे कुछ मुलाजम वड्डे अफसरां नाल मिलके एक पिंड तो दूए पिंड तक जांदी 4-5 किलो खंभियां तो तार वेच के खा गए
0: खंभियां तो तार वेच के खा गए खंभे ओवें जिवें खड़े ने किन्नी शर्म दी गल है यार
1: बेहद शर्म दी गल है जे किते साडी सरकार हुंदी
0: तां असीं सने खंभे खांदे यार
1: एक आम जी गल है
0: केड़ी
1: के था था नी पत्थर गड्ढे तुसी देखे होने नी पत्थर गड्ढे पे ने उन्हां नूं कोई पुछदा नहीं सरकारां टुट जांदियां ने
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: असीं तुहाडे नाल वादा करदे आ
0: हां जी
1: जे किते साडी सरकार आ गई तां असीं नी पत्थर रखांगे भी
0: ते अपनी सरकार टुटण तों बाद अपने पट के लै जांगे सरकार दी निशानी नहीं छड्डनी
1: नी पत्थरां दी गल छड्डो साडे पंजाब दे शमशान घाटां दा भी बहुत बुरा हाल है
0: तूं गया उत्थे फिर वापस किवें आ गया
1: यार मुर्दा फूकण गए सी
0: अच्छा अच्छा मैं सोचा किते भूत तुरी फिरदी
1: असीं उत्थे देखिया कि शमशान घाट विच पीण वाले पानी दा भी कोई प्रबंध नहीं
0: की गल मुर्दियां नूं प्यास लगदी है शमशान
1: घाट जेड़े पिंड तो 5-5-6-6 किलोमीटर दूर है
0: अच्छा
1: लोकां नूं मुर्दा फूकण विच बड़ी मुश्किल आउंदी है
0: मतलब मुर्दा फूकण वेले लोकां नूं पिंड दे बाहर 5-5-6-6 किलोमीटर जाना पैंदा
1: हां
0: माड़ी गल है
1: असीं तुहाडे नाल वादा करदे आ
0: बिल्कुल
1: जे किते तुसीं सानूं वोटां पा दिओ
0: तां असीं घर घर शमशान घाट बना देंगे यार
1: बाकी नशे साडे देश नूं खोखला कर रहे हैं
0: बिल्कुल
1: खास तौर ते शराब
0: शराब
1: असीं शराब दे सख्त खिलाफ आ
0: बहुत ज्यादा खिलाफ आ
1: शराब ते पाबंदी वास्ते असीं अज दी सरकार नाल दिन रात लड़दे आ
0: ताइयों इन्नी उच्ची बोलदे आ पौआ पी के स्टेज ते चढ़दे आ
1: एक होर बहुत बड़ी समस्या
0: केड़ी
1: वधदी आबादी
0: बिल्कुल
1: वधदी जनसंख्या
0: बहुत ज्यादा
1: जेड़ी दिनों दिन वधदी जांदी है
0: बहुत तेज रफ्तारी नाल
1: असीं तुहाडे नाल वादा करदे आ
0: बिल्कुल
1: जे तुसीं आज की सानू वोटां पा दिओ
0: मोहरां ला दिओ
1: कुर्सी ते बिठा दिओ
0: असेंबली च बिठा दिओ
1: तां असीं एक साल दे अंदर अंदर आ जनसंख्या अद्धी कर देंगे
0: भावें दवाई छिड़क के बंदे मारने पैण
2: हार्मन रेडियो 24/7 जो व्यक्ति अपने आप ते शंका करदा है ओ उस व्यक्ति वांग है जो अपने दुश्मना दी जमात विच शामिल हो गया होवे ते जिसने अपने ही खिलाफ हथियार चुक लै हों विचार अलेक्जेंडर डूमा अजाहे खूबसूरत विचारां संग आवाज दी परवाज सुनदे रहो हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया दिल पंजाबी जज्बा पंजाबी

0: अपनी बिजनेस दी तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस दी एड देण लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ।

नमस्कार, मैं हूं सनी देओल और आप लोग सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का नंबर वन पंजाबी स्टेशन हार्मन रेडियो। सुनते रहिए क्योंकि मेरे पापा भी सुनते रहते हैं। थैंक यू।

मैं हाँ अमनदीप सिंह सिद्धू, डायरेक्टर हरमन रेडियो। दुनिया के हर कोने तो पंजाबी साडे नाल जुड़ते हैं, आला दर्जे की पेशकारी का आनंद माणते हैं। हरमन रेडियो के आस्ट्रेलिया तो सारे प्रजेंटर मुफ्त सेवा निभाते हैं। तुसी भी साडी मदद कर सकते हो, सानू वधिया वधिया जानकारियां भेजो

इतिहास बारे इटली दी कहावत है कि इतिहास जदों भी अपने आप नूं दोहरांदा है तां मनुखता नूं इस दी कीमत होर भी ज्यादा चुकानी पैंदी है।

0: के धूप में हसो।
1: जट्टा के मुंडे साढ़े नाल है, चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
2: थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए।
3: ताही ता मैं हुण आई हां बई पुछ के ता आवां बई ऐत की छनकाटे च की कुछ पाणा है।
4: पाणा की आ तू मैं ते बाला बाकी मिर्च मसाला।
3: फेर भी तफसील नाल दसो।
4: लै तफसील नाल सुन ला। हासे दियां लाउणियां झड़ियां ने, कुछ सच्चियां ने, कुछ घड़ियां ने, कुछ मिठियां ने, कुछ खरियां ने, कुछ इधरों उधरों फड़ियां ने, कुछ बातां वतनों पार दियां, कुछ गुस्से दियां, कुछ प्यार दियां, कुछ अंदर दियां, कुछ बाहर दियां, कुछ गल्लां मेरी सरकार दियां।
3: चाचा जी हसन वाले थोड़े ने पर बहुते थोतो सड़ने हैं, सो सोच समझ के पंगा लियो पैणे हर जाने भरने हैं।
4: ओए जद उखली विच सिर दे देता फिर मोलियां तो की डरने हैं। चतरे ने विच छणकाटे दे ऐतकी गिण

0: जड़ते कोके कोके कोके कोके
1: सर चाचा जी शर्मा जी किथे ने
2: जिदा दे मेहमान ओदा दे मेजबान मेरे आउन तो पहला दा बाथरूम च नहा रहा पता नहीं केड़े जन्म जन्म दी मैल ला रहा
1: कोई खड़का भी नहीं हो रहा
2: ओए खड़का ता तां होवे जे गिरया होवे नाले सुख नाल शहरियां दे शावर आले बाथरूम भी इन्ने भीड़े भीड़े हुंदे आ जे बंदा तिलक के गिर भी जावे फिर भी खड़ा दा खड़ा ही रहिंदा
3: चाचा जी सत श्री अकाल
1: हाँ शर्मा जी कल्ला टॉवल बन के ही आ गए
4: सॉरी सॉरी सॉरी नीलू जी मैं हुणी कपड़े पा के आया हुणी
2: वाह रे तकदीरे बीजियां भिंडियां ते उग पे घीए ओए बंदा घर च कल्ला कह रहा भी नहीं चाहिदा धीआं पैणा जरूर चाहीदियां नहीं तां सारी उम्र बंदा वेड़े च कछा पा के ही गेड़े कढ़दा रहिंदा
1: मेनू लगदा शर्मा जी नूं पता नहीं लग्या होना कि मैं आई हुई आं ताई तां कल्ला टॉवल बन के आ गए
2: ओए तू शुक्र कर अज तां टॉवल बन्या पिछले हफ्ते इहनूं देखण वाले आ गए ए प्यो दा पुत अज वांगू नहाउण गया डूढ़ घंटा गुसलखाने चों ना निकलिया ओह आख के बाथरूम दा दरवाजा खड़का के कहिंदे काका जी असीं तां चले आ ए डर गया किते कुड़ी वाले मुड़ ना जाण पतंदर उहनां सामणे उदां ही निकलिया ओह अखां ते हथ रख के खड़ गए कहिंदे बशर्मा फेर आई पहलां अंदरों जा के कुछ पाया ये अंदर गया नू होर ता कोई लभ्या नहीं काली काली चप्पल पा आया
3: नीलू जी हासे ते पैर आ गया जेड़ा हासे ते हासा चढ़िया लगदा चाचे ने अज कोई नवा टोटका करिया
2: ओए ए ता कमली आ हुणे लोट पोट होई जांदी आ अजे ता चाचे ने पहला कोका जड़िया
3: लगदा मेरी पिठ पिछे मेरे ते जड़ता
2: पिठ पिछे की आपा मुंह ते जड़ दने आए दस किन्ने भरा हो
3: सत
2: अच्छे बेच के एक भैणी ले लो नाले घर च रहन सहन दा सलीका आजू तू भी ता रखड़ी वाले दिन कंधा कोलियां च वजदे फिरदे हुंदे हो
1: चाचा जी गल ता थोड़ी बिलकुल सही है
2: गलत कदों हुंदी है
5: सुनो ते सुनाओ अर्बन रेडियो
6: किसे इंसान ने किन्नी खूबसूरत गल कही है मैं तेनू इस लई सलाह नहीं दे रहा क्योंकि मैं तेरे तो ज्यादा समझदार हाँ बल्कि ये सलाह मैं इसलिए दे रहा हाँ क्योंकि मैं जिंदगी च तेरे नालों ज्यादा गलतियां कीतियां ने।

0: जद भी चाहो सुनो हिट गीत हरमन रेडियो है तुहाडी सेवा विच पुराने गीतां दी मिठास नवे गीतां दी धुन हरमन रेडियो हिट गीतां दी मशीन।
1: सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गगन मसौन हुण हरमन रेडियो ते अपनी आवाज विच पंजाबी दियां प्रसिद्ध कहानियां कवितावां अते विचार लेके हाजिर हुंदा हां। मेरिया होर वधेरे रचनावां सुनन अते फीडबैक देने लई मेरा यूट्यूब चैनल पंजाबी क्रिएशंस सबसक्राइब करना ना भुलना।

0: इंसान मकान बदलता है, कपड़े बदलता है, दोस्त बदलता है, संबंध भी बदलता है, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि अपना सुभाग कदे नहीं बदलता। चंगे विचारां नाल सुनदे रहो हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया, दिल पंजाबी, जज्बा पंजाबी।
1: बोले चाले चा।

0: के दोख में हसो।
1: जट्टा के मुंडे साढ़े नाल है जे चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
0: थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए।
1: रुक दे फट्टा।
2: ओ जानती है तू बाहर लिया जी की गल कर दी है। मेनू तो एक दिन मेरे घर आली ने बड़ा ठट किया।
3: ना उनू की हो गया?
2: ओ थोड़े दिन पहला किते सारे मेंबर पंचायत काबी किते जेड़े होर लखीना च खड़े पांच चार विधायक कठे होके मेरे घरे आ गए। ड्यूटियां ड्यूटियां लाउणियां सी।
3: अच्छा।
2: ओ मैं घर आले नूं कहा, मैं कहा भागवान ने अज मेरी बेइज्जती ना करा दी, माड़े मोटे लीड़े चज हाल दे पाली।
3: आहो
2: शांति बैठे गल बात अजे चलदी सी, चाह चू पींदे सी। चलो बाथरूम च वड़ गई। मैं कहा भाई चल सोना नहाण लगी है भाई चल। मैनू कहंदे जी सुणदे हो आ बूटियां वाली सलवार बढ़ायो मैनू। मैं कहा चल भी अज लीड़े लूड़े निखर के आओ। ते थोड़ी देर बाद फिर आवाज मारी, कहंदी जी आ सुनियो आ दंदा ते फेर नाला बुरश दियो तां मैनू। मैं संत की पेस्ट पूस्ट ला के दिती। मैं कहा भाई अज तां बुरश वर्श करके मैं कहा भाई पर भूम वगैरा बाहर ला के निकल। बस दो मिनट बाद संत जद दाड़ देने लत बजी ना बाथरूम आले दरवाजे च। मैं ख्याल भी कम हो गया लगता। मैं हजे उधर नु आउण ही लग्या सी, भगा के मेरे गिट्टां च बुरश मारे।
3: अच्छा।
2: मैं ख्या की गल होगी बुरश कीता नी?
3: की कहंदी?
2: कहंदी बुरश मैं करन वास्ते नहीं सी लिया तेतो, मैं तां बूटियां वाली सलवार च आपदा नाला पाणा सी।
4: हसण दा समा है हरमन रेडियो ते हासियां दी बारिश।

चल चलिए एक दुनिया बनाइए, विच होण खुशियां दे रंग, गल्लां करिए दिल वालियां, भाईचारे दे संग। सोच परवाज नवा आगाज ते दिल मिलियां दे साज, सुनिए सुनाइए सांझी एक आवाज। ऑस्ट्रेलिया दा 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाला पहला पंजाबी रेडियो ट्रूली यू आर।

खूबसूरत आवाज दा सफर हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया मुड़ हाजिर होने एक छोटे जे वक्फे तो बाद सुनते रहो आवाज दी खूबसूरत परवाज हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सेंड अस मैसेज ऑन info@harmanradio.com

0: इस प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई तुसी साडे नाल संपर्क कर सकते हो।
1: खूबसूरत आवाज दा सफर हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया मुड़ हाजिर होने एक छोटे जे वक्फे तो बाद सुनते रहो आवाज दी खूबसूरत परवाज हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सेंड अस मैसेज ऑन info@harmanradio.com।

0: Carmen Radio 24/7.
1: पेट बारे स्पेन दी कहावत है कि पेट कारोबार दी रूह हुंदा है। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो।

0: रोटी हजम नहीं होंगी। वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल्स का गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट केमिकल की वरतों वाली कणक जेडी की सीधी खेतों चो मिल च लाई जाती। ऑस्ट्रेलिया का बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डुआं लई स्पेशल बेसन, मल्टीग्रेन आटा, काबली छोले, मसरां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन .com.au या फोन करो 0428-895-564।
1: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। ओ आजो आजो ताया जी, वेलकम। ताया अज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथों किथों मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर इथों मिलदा। सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब इथों मिलू। मंजे, धार्मिक फोटवां, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ इथों मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा, ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामण दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। आ कॉल कर लियो ताया जी 0404-000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
2: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो, 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो। हरमन रेडियो, हर्मन रेडियो।

ने परमात्मा करता पुरख अपने भगत जनां दी सदा ही पैज रखदा ते हमेशा ही हर वक्त दे विच ओ अपने प्यारियां दी लाज अपने प्यारियां दी पैज भाई जनों रखदा आया।

0: रामा।
1: फिर भगत कौन है जी जो गुरमुख होवे। महाराज जी फरमाउंदे ने भगत ओ है भाई जिहड़ा गुरमुख होवे। भगत अपने मन दी मत दे नाल नहीं बनिया जांदा। संखेप जी इहदे बाबत मैं विचार आप जी दे सन्मुख रख के अगे तुरां। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे वड्डे भराता बाबा पिरथी चंद की उन्हें बाणी नहीं जी पढ़ी, की उन्हें गुरु घर च सेवा नहीं कीती, की माता भानी जी की कुखों जन्म नहीं होया, की माता भानी जी का दुध नहीं चुंगया, की धन श्री गुरु रामदास महाराज ने गोद विच ना खड़ाया, की गुरु अमरदास जी की गोद का निग नहीं माणिया, फिर नुक्स की रह गया। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी कहिंदे आ इक तनुकतै होए जाए महरम मुजरम खैर खुआरी। महरम लिखना होवे फारसी दे विच उर्दू दे विच ते उहदा शब्द जोड़ स्पैलिंग बणदे मीम हे रे मीम, ते जे गलती नाल लिखदिआं किते इक नुकता पै जाए इक छिट पै जाए ते हे जे बन जांदा उह बन जांदा मुजरम। लिखिया तां महरम सी, गलती नाल इक बिंदी पै गई इक भुलेखे दे नाल छिट पै गई उह मुजरम बन गया। महरम दा मतलब है दिल दा भेती ते मुजरम दा मतलब है गुनाहगार। गुरु अर्जन देव महाराज जी गुरमुख हो के भगत बन गए ते बाबा पृथ्वी चंद हउमै दा नुकता ला बैठा मैं गुरु दा पुत हां, मैं वड्डा पुत हां गुरु दा। इस तों वी अगे जाके फिर कहिंदा मैं गुरु घर दा प्रबंधक हां, मेरे बगैर ते गुरु घर दा काम ही नहीं चल सकदा। इन्ना ही नुक्स पिया ओ गुरु रामदास जी दा मुजरम बन गया जी। सतगुरु जी कहिंदे ने भाई भगत ओ है जिहड़ा गुरमुख होवे। गुरमुख हो के भगती करे ते दर ते प्रवान पै गया, जे हउमै आ गई ना जे मन दी मत आ गई ओ भगत नहीं हो सकदा। मेरे दाता जी कहिंदे ने ओ फिर गुरु के शब्द दे द्वारा अपनी हउमै नूं साड़ लैंदा, अपनी हंगता नूं नाश कर लैंदा है, ऐसा गुरमुख भगत।

गुरु के शब्द गुरु के उपदेश नू कबा के अपनी हउमै नू नास कर लिया, हउमै नू साड़ लिया, हउमै शब्द जलाया, मेरे हर पाया ओ परमात्मा दे दर ते पौंदा है। जेड़ा मैं नहीं मार पौंदा ओ परमात्मा दे दर ते नहीं पौंदा। जिस दी साची बाणी परमेश्वर दी बाणी जो सदा अटल है उस गुरमुख दे अंदर वास करदी है, फिर ओदे मुख दे विच वी जेडे बोल ने ओ वी परमेश्वर दी ही बाणी हुंदी है, ते ओदे बोल वी सदा अटल हुंदे ने, ओदे मुख दे विच वी सदा वाहिगुरु दी वडियाई रहिंदी है।

गुण अवगुण पछाण है। सिख ने पछाण लिया कि पंज ककारां दी रहत विच मैं पक्के रहना ते अवगुण जिहड़ियां चार बजर करहिता ने इन्हां तों मैं सदा दूर रहना। गुण अवगुण पछाण है, हर नाम वखाणा, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सद काम। भै भगत मीठी लागी, उन्हां नूं भै भगती परमेश्वर दे चरणा कमलां दा प्यार, सदा सिमरन सदा सेवा, एदे विच ही आनंद आउंदा है। एहो

सतगुरु जी ने कृपा की है कि जेड़े भगत जन ने ना गुरमुख उन्होंने कार्ज वाहेगुरु आप करदा भगतां कह घर कार्ज साचा उन्होंने सच्चा कार्ज केड़ा सी भला ओसी नाम ओसी सिमरन ओसी सेवा ओ गुरु दा बचन गुरु दी रहत ओसी पर उपकार आपा गवा के वाहेगुरु दी रजा हासिल करनी तो जेड़े गुरमुख ने ओ सदा इसे

अपने प्यारियां नूं भगती दा खजाना वाहिगुरु ने आपे बख्शिया ते काल कंटक नूं मार समाया। ओ काल कंटक नूं मार के उच्चे हो गए, सतगुरु जी दे बचना नूं कमा के गुरबाणी दा रूप हो गए परमे

गुरु के शब्द दे नाल लग के ऐसे सोभनीक हो गए, गुरमुख उच्चे हो गए। वेल होवे ना, वेल कोई सब्जी दी, ते जे ते ओ दरखत दे लागे बीज दईए ते दरखत ते चढ़ जांदी, उच्ची हो जांदी है। जे खूह दे लागे होवे ते खूह दे विच लमक के नीवी हो जांदी है। जे हो जी संगत करांगे खालसा जी, ओहो जिहा जीवन हो जाएगा। जिन्हां ने गुरु के सिखां दी संगत कीती, गुरु की संगत कीती।

0: पर एक वस्तु है ना जेड़ी वो है नाम असल वस्तु ओदे तक पहुंच नहीं हो रही जीव दी इसलिए शरीर भी भुखा ते आया ते मन भी भुखा ते आया सदा रहिंदा
1: धन कर बिना दो कर जोड़
0: ए जेड़ी देही है ना धन देही ए हाथ जोड़ दी है बार बार तरले लै रही है
1: प्रेम परदेश न जाहो वसो हो घर मोर
0: के हे मेरे प्रे जी परदेश ना जावो ते सदा मेरे विच ही वसो के कदे माड़ा जा बुखार चढ़ जाए फिक्र पै गया डर पै गया माड़ी जी को गल हो गई उस वेले डाक्टर दे कोल क्यों भजदे आ इस करके के हे प्रे जी परदेश ना जाओ इत्थे

0: जिन्ना चिर ओदा हुक्म है उन्ना चिर तेरे नाल मैं रहना है ते जिदन ओने सदिया मेनू जाना पैना मेरे वस नहीं है।
1: जो प्रेम वचन कहे धन साचे।
0: जदों पति जी ने जीव आत्मा ने सच्चे वचन कह दिते ना कल्ले आवह नानका सदे उठे जाही ओ सच्चे बचन जदों आखे ना पति ने
1: धन कशु न समझे चंचल काचे।
0: ओ जेड़ी धन है देही है ए सच नू समझ नहीं पाउंदी ते समझदी है के एवें गल्लां करदा है घर दे विच वी किते कोई मौत दी गल होवे ते उस वेले कह दिता जांदा ना भी एहो जिहियां गल्लां ना कर तो इन्हां गल्लां नू असीं

मुहावरे बारे हिब्रू दी कहावत है कि मौके अनुसार कहा मुहावरा हीरे वर्गा हुंदा है। ए रोशनी भी करदा है ते कटदा भी है।

0: Harman Radio
1: 24/7.
2: Tera kyon nahi sajda, ilzam kyon nahi aunda? Sehra kyon nahi sajda, ilzam kyon nahi aunda? Tere dil de varkyan te mera naam kyon nahi aunda? Chum chum ke pair tere ik lehar puch rahi hai. Chum chum ke pair tere ik lehar puch rahi hai. तेरी प्यास की कथा विच मेरा नाम क्यों नहीं आउंदा? किथे तू तप रहा है, किथे तू खप रहा है? किथे तू तप रहा है, किथे तू खप रहा है? हुण मेरी शां च तैनू आराम क्यों नहीं आउंदा? जिथे मैं डाल होना, जिथे तू फुल बनना। जिथे मैं डाल होना, जिथे तू फुल बनना। मेरे इश्क दे सफर विच ओ मुकाम क्यों नहीं आउंदा? रुखां नू फुल आए, नदियां च नीर आया। रुखां नू फुल आए, नदियां च नीर आया।

0: हरमन रेडियो
1: 24 घंटे सत्ते दिन।
2: सत श्री अकाल जी, मैं हां तुहाडा अपना रेशम सिंह अनमोल, ए तुसी सुन रहे हो हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

जो गल अज कही दोबारा ना कही। मैं कहा ना जे तू नहीं तो मैं नहीं, फिर भी तेरी जिद है तेरी मर्जी है, अग हिजरां दी आपे असीं बाल लवां।

हर प्रोग्राम दी जानकारी, रेडियो दी हर गतिविधि ते नजर। ज्वाइन करो साडा फेसबुक पेज facebook.com/harmanradio australia जां जुड़ो टेलीग्राम ते telegram.me/harmaninfo। वधेरे जानकारी लई विजिट करो साडी वेबसाइट harmanradio.com।

0: हरमन रेडियो
1: 24 घंटे 7 दिन।
2: रोना तोना दे क्यों सानू ते भाग्यों विच फिकरा पट्टी लीर पुरानी वांगू टंग ग्यों विच किकरा ओ टुर ग्यों सानू कल्या छड़ के टुर ग्यों सानू कल्या छड़ के दस किवें दिल पर चाहिए लाग्यों जेड़ी अग विच सीने हुन कादे नाल बुझाइए केड़ा रुस्से नाल साडे किन्नो रो रो असी मनाइए आजम यार यारानो मिलते असी किन्नो सीने लाइए असी किन्नो सीने लाइए।

0: हार्मन रेडियो
1: 24/7।
2: उने मेरे ते इल्जाम लाया कि मैं उदी रातां दी नींद चुरा ली। फिर उने मेरे ते इल्जाम लाया कि मैं उदी सूरत भुला ली। इल्जाम ता उने मेरे ते ए वी लाया कि मैं उदे दिल ते डाका मारिया। ते इल्जाम ता उने ए वी लाया कि मैं उसदी मत नू वी मारिया। इन्ने इल्जाम लगन तो बाद भी मैं मोहब्बत दियां बहारां च आजाद परिंदे वांग उडारियां मारता रहा। बड़ा अजीब है ना प्यार दा ही कानून। पर अज उन्हें सारे इल्जाम वापस ले ले ते मैनू बाइज्जत बरी कर कहिंदी, सुख तू ता सीरियस ही ले गया, मैं ता बस टाइम पास करती सी। शायद उन्हें मुलजम नवा पाल लिया ते मैं सारे इल्जामा तो बरी होके भी उदी बेवफाई दी जेल च कैद हो यादां दी सजा कट रहा हां। बड़ा अजीब है ना प्यार दा एक नूं।

0: सुनो ते सुनाओ अर्बन रेडियो।
1: सिखर तो पैर सिर से मेरा टल चलिया परछावा, कबरां उड़ीक दिया मैनू ज्यों पुत्रां नू मावा। जिंदगी दा थल तपदा कल्ले रुख दी होंद विच मेरी, दुखां वाली कहर चढ़ी वगे गमां वाली तेज हनेरी। मैं भी क्या रुख चंद्रा जिन्नू खा गईयां उहदियां छावां, कबरां उड़ेक दिया मैनू ज्यों पुत्रां नू मावा। हिजरां च सड़दे ने सुखे रोट ते सुखियां चूरियां, उमरां तां मुक चलियां पर मुकियां ना तेरियां वे दूरियां। रच रच झूठ बोलिया मेरे नाल चंद्रियां तावां, कबरां उड़ीक दिया मैनू ज्यों पुत्रां नू मावां। लोकां मेरे गीत सुन ले, मेरा दुख तां किसे भी ना जानिया, लखां मेरा सीस चुम गए पर मुखड़ा ना किसे भी पछानिया। अज इसे मुखड़े तो पिया अपना मैं आप लुकावां, कबरां उड़ेक दिया मैनू ज्यों पुत्रां नू मावां। सिखर तो पैर सिर ते मेरा टल चलिया परछावा, मेरा टल चलिया परछावा।

0: दोस्तों मैं दीप जगदीप ते तुसी सुन रहे हो हरमन रेडियो। हुण मैं हरमन रेडियो ते अपनी आवाज विच पंजाबी साहित विचों प्रसिद्ध कहानियां कवितावां अते अणमुल्ले विचार लेके हाजिर हुंदा हां। मेरियां होर भी रचनावां सुनन लई अते अपने कीमती सुझाव देण लई यूट्यूब पर मेरा चैनल पंजाबी साहित्यक मंच देख सकते हो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी।

युद्ध बारे सियाने कहंदे हन कि युद्ध शुरू हर कोई कर सकदा है पर खत्म कोई कोई। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो।

0: आवाज दी खूबसूरत प्रवास हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ते आप सब दा स्वागत है। रेडियो ते अपने गीतां दी फरमाइश ले तुसी साडे नाल ईमेल अते टेलीग्राम राही जुड़ सकते हो। टेलीग्राम मैसेज करो इस नंबर ते 9197080149499। तुसी सानू ईमेल भी कर सकते हो request@harmanradio.com।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी।

0: तेरी जद करन मैं लग्या अल्फाज उर्दू दे भी थुड़ गए ने पूरी कायनात रखा तेरे कदमां दे विच तेरे नाल नसीब जो जुड़ गए ने तेरे नाल नसीब जो जुड़ गए ने
1: ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਤੇ

0: सुपने विच तुसी मिले असानू, असा ता गल वकड़ी पाई। निरा नूर तुसी हाथ ना आए, साड़ी कंबदी रही कलाई। ता चरना ते सीस निवाया, साड़े मत्थे छो ना पाई। तुसी उच्चे असी नीवे सां, साड़ी पेश ना गई आकाई। फिर लड़ फड़ने नू उठ दौड़े, हाए लड़ ओ बिजली लहरा। उड़दा जांदा पर ओ अपनी, छो सानू गया लाई। मिट्टी चमक पई ए मोई, ते तुसी लूआं विच लिशके। बिजली कूंद गई थर्रां दी, हुण चका चूंद है शाई। सुपने विच तुसी मिले असानू, असां ता गल वकड़ी पाई। निरा नूर तुसी हाथ ना आए, साड़ी कंबदी रही कलाई। रचना भाई वीर सिंह, आवाज सरबजीत सिंह।
1: तुहाडे मन दी रीज पुगावांगे, मन चाहे असी गीत सुनावांगे। हर मन रेडियो।

नमस्कार, सत श्री अकाल। हरमन रेडियो सुनने वाले तमाम श्रोताओं को मैं उदित नारायण की तरफ से मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: अपनी बिजनेस की तरक्की लिए तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकते हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देन लिए जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लिए संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो।

पाताल लख आकाशा आकाश ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सैंस अठारह कहन कतेबा।

केते मूर्ख खाई खाए केतिया दुख भूख सदमार। ए बेदात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए जे को खाए आखन पाए, ओ जाने।

आसन लोए लोए पंडार, जो कुछ पाया सोए कावार, कर कर वेखै सिर जनहार, नानक सचे की साची कार, आदेश तसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस, एक दूजी पौ लख होए, लख होए लख वीस, लख लख गेड़ा आखिया, एक नाम जगदीश, ए तरह पत पवड़िया, चढ़िया होए अकीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस, नानक नदरी पाईए, कूड़ी कूड़ै ठीस, आखन जोर, चुपै नहीं जोर, जोर न मंगन दे न जोर, जोर न जीवन मर न जोर, जोर न राज माल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थिति वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिन के नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापे जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का खो करम, केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते ब्रह्मे कार्त कड़िया, रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर, केते केते तूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद, केतिया खानी, केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेव केते, नानक अंतरांत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद मनोद कोट आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै कार्त कड़िए बहुत अनूप, ता किया गल्ला कथिया ना जाए, जे को कह पिछे पछताए, तिथै कड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथै कड़िए सुरा सिदा की सुध, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोध महामलसूर, तिन मैं राम रिया भरपूर, तिथै सीतो सीता मैं मामा, ताके रूप न कथने जाए, ना ओ मरे ना ठागे जाए, जिन कह राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसे के लोए, करे आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसे नंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत नांत, तिथै लो लो आकार, जिव जिव

0: कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई। रूपहीन बुद्ध बलहीनी, मोय पर देसन दूर ते आई। रागौड़ी विचों पंचम पातशाह जी दे ए पवित्र बोल। मेरे विच ओ केड़ा गुण है, ए जीव वल्लों इक अरदास है कि जीव तेरे विच केड़ा गुण है जो उस प्राणा दे राखे अकाल पुरख ते नाल तेरा मिलाप हो जावे। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखे बिख खाही। माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाही। फिर कोई साडा रूप नहीं है, निमाणे जे रूपहीन बुद्ध बलहीनी, ना तो बुद्धि है ना ही साडे विच को पावर ताकत है। पर एक गल है, अरदास सब तो वड्डी चीज है। सतगुरु कहिंदे इवे क्या कर मोहे पर देसन दूर ते आई। बड़ा लम्मा गेड़ा मैं लाया, 84 लख जूना दा गेड़ा ला के तेरे दर ते पहुंची हां। ए जीव आत्मा जदों इवे उस मालिक नाल अभेद होने की गल करेगी तां जरूर इसकी सफलता होएगी। तां आओ उस मालिक अगे बेनती जोधड़ी अरदास करिए, सतगुरु अपने चरना नाल जोड़ लो।
1: ना उड़ीकी दादीए दी कामयाबी तो बाद गुलशन कुमार पेश करदे हन भाई मनिंदर सिंह श्रीनगर वालियां दी एक होर धार्मिक रचना, उना दी ही आवाज विच विछड़े परावां दी कहानी, जो चमकौर दी गड़ी दे अंदर दे हालात बयान कर दिए। मनुखता नूं आजादी दा फुरमान देन वाले कलगियां वाले पाशा अपने 35 सिंघां ते 2 साहिबजादियां नाल चमकौर दी धरती उत्ते कच्ची गड़ी विच दुश्मन दी 10 लख फौज दे घेरे विच घिरे होए किसे अनोखे इतिहास दी सिरजना करन जा रहे हन। हनेरी काली अते ठंडी रात विच जद सारा जहान नींद दी गोद विच थक सुत्ता पिया है, गुरु जी दी ए छोटी जिही फौज 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं दे वचन पूरे करन दी तैयारी कर रही है। इस फौज विच बैठे हन गुरु जी दे 2 वड्डे पुत्र बाबा अजीत सिंह जी ते बाबा जुझार सिंह जी, जिन्हां ने कल सवेर नूं 5-5 सिंघां दे सरदार बन के शहीदी पाउनी है। इन्हां नूं जिथे एक पासे शहीद होके अपने पंथ दा नां उच्चा करन दा चाह है, उथे दूजे पासे अपने विछड़े 2 वीरां दी याद बार बार दिल नाल टकरा रही है। छोटे जिहे फतेह सिंह ते जोरावर सिंह नूं अपनी गोद विच खिडाया सी, वो बचपन दियां खेड़ां, वो प्यार, वो शिकायतां लाउनियां, रुस जाना फिर मन जाना, एक एक याद अखां सामने आ रही है।

अंच चोर बसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा अमृत लूटी मनमुख नहीं बूझे कोई ना सुने पुकारा अंधा जगत अंधवर तारा बाज गुरु गुबारा। राग सोरठ विच धन गुरु अमरदास महाराज जी दे इन्ना पवित्र बोला विच साडे लई इक वड्डी सिख्या है। दुनिया उत्ते जिन्ने भी जीव जंतु ने वो किसी ना किसी एक वकार विच दो वकार विच घिरे हुए ने, पर यह मनुख है जिहड़ा पंज वकारां विच घिरिया होया है, काम क्रोध लोभ वो अहंकार। ते ये पंजे वकार दिन रात इहदे अंदरों जो अमृत रूप है बोल ने बाणी है उन्हों लुट रहे ने, ते कोई पुकार भी नहीं सुन रहा। कारण की है? सारा जगत अंधा होया फिरदा है, अंधे वर्तारे विच है, ते गुरु दे लड़ लग्यां तो बगैर हर पासे गुबार अनेरा है। आओ इस अनेरे विचों बाहर निकलिए, ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी पवित्र बाणी विचों एक शब्द सरवण करिए।

0: सतगुरु अंगद देव जी दी पत्नी माता खीवी जी लंगर चला रहे सन के कोई भी आया प्राणी पेटो भुखा ना जाए, जेड़ा आवे ओ तृप्त होके जावे। पिंडा विच रहण वाले गरीबां दे बच्चे जदों उना नू चंगी खुराक मिल गई तां ओ ताकतवर पहलवान बन गए। सतगुरु उना दियां कुश्तियां करवांदे सन ते बड़े शौक दे नाल आप देखदे हुंदे सन। विचार ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना, सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।
1: अन्न खाना कपड़ पहनन दिया, रस अन्न भोगानी, जिन दिए सो चित ना आवे, पशु हौ कर जानी। रागौड़ी विच धन गुरु रामदास महाराज जी, मनुख दी तुलना पशुआ नाल करदिया कहिंदे ने कि जिस अकाल पुरख ने खान नू अनाज दिता है, पहनन नू कपड़े दिते ने, होर दुनिया दे कई भोग रस दिते ने, पर ए मनुख उसे रब नू ही भुल बैठा है ते कहिंदा है ए ता सब मैं बनाए ने। सवाल है कि सूरज मनुख ने बनाया, जो चानण देंदा है, रोशनी देंदा है, धुप देंदा है, गर्मी देंदा है, कि धरती मनुख ने बनाई है जिथों ये अनाज होर खनिज पदार्थ लभ रहा है, होर ता होर हवा ते पानी की मनुख ने बनाए ने, नहीं ना। वो बंदिया तेरे नालों ता पशु चंगे ने, जो थोड़े जे खाने जा प्यार दे बदले सारा दिन तेरे पिछे पूछ हलाउंदे फिरदे ने। होर ता होर पशु सुखी तूड़ी कड़ब खा के अमृत वर्गा दुध देंदे ने। पशु मिले चंगियाईयां खड़ खावे अमृत दे, नाम विहोने आदमी त्रिग जीवन कर्म करे। जब लग जोत काया में बरते, आपा पशु न बूझे, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कशु न सूझे। ओ भाई, जिन्ना चर सवासा दी माला चलदी है ना, अपने तत नू क्यों भुल बैठा है। ओ भी मिल जाए, आ भी मिल जाए, इसे लालच विच ही तू अपनी जिंदगी गुजार दिती है। नरु मरे नर काम न आवे, पशु मरे दस काज सवारे। ओ वेख ला बंदिया, तेरे नालों ता पशु चंगे ने, जिड़े मरण तो बाद भी अपने हड्डा अपनी चमड़ी अपनी मिज नाल साडे कई काम सवार देंदे ने। ते मनुख मनुख मरे ता सवरना ता की है, सगो होर खर्चे वध जांदे ने, कला कलेश वधा जांदा है। भगत कबीर जी ऐसे मनुख नूं तागीद करदे ने, दीन बसारियो रे दीवाने, दीन बसारियो रे, पेट भरियो पशुआ ज्यों सोयो, मनुख जन्म है हारियो, दीन बसारियो रे दीवाने। ता आओ गुरमुखो, राग मारू दे इस शब्द नूं कीर्तन रूप विच सरवण करदे हां। शब्द सरवण करा रहे ने भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले, ते उन्हां दा कीर्तनी जथा। आओ सरवण करिए, दीन बसारियो रे दीवाने, दीन बसारियो रे।

तू अस्थिर कर्माने ते पाहुन दोदाहा। पुत्र कलत्र ग्रह सगल समग्री सब मिथिया असनाहा। राग आसा विचों पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दे बोल कि हे मनुख हे जीव जिन्हां पदार्थां नूं पदार्थां विच साडा घर भी है कार भी है कारोबार भी है नौकरी चाकरी भी है साडे आल दुआले जुड़े जिया जंत भी हन रिश्तेदार भैन भाई पर ए सब कुछ कुछ पलां दे ने कुछ पलां दा साथ है। सतगुरु कहिंदे सब मिथिया असनाहा ए जिन्नी भी समगरी है सब मिथिया होया साडा इन्हां नाल प्यार है। समा पा के हर एक चीज साडे तो विछड़ जाएगी खोई जाएगी खत्म हो जाएगी। सो नाल निभण वाली केड़ी चीज है ओ है अकाल पुरख दा नाम। जिन्हां ने अकाल पुरख दे नाम नाल जुड़ना कीता उन्हां दा ही ए मनुखा जन्म सफला होया। ता आओ अपने इस मनुखा जन्म नूं सफला करिए ते उस अकाल पुरख दे नाम विच जुड़न लई ए शब्द नूं सरवण करिए।

गश्ती करते हुए स्वेत दी ताजगी संग ताजा खबर महत्वपूर्ण जानकारियां मनमोहक संगीत सेहत संबंधी सिलसिले मुलाकातों का दौर अति सरगोशियां मालबन तो माणो मेरे नाल यानी अमरदीप कौर नाल हरमन रेडियो दे प्रोग्राम लहरां दे विच सवेरे 8 बजे तो 10 बजे तक।